एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हरेक घर को खुशी घर घर में एलजी एलजी लाइफ गुड।

0: उज्यालो रेडियो नेटवर्क देयथिति एफएम स्टेशन अनलाइन पाखे हलिङ्क छक्ल प्रसारण जुयाचुङ्गु सुथ क्षेत्रीय नेपाल वासुबुखे प्राविधिक पासा प्रवीण श्रेष्ठ लिसेन्जी सर्ण रजोपाध्याय चोजलपा दक्ली नापा मुबुख सरकार न्यागु दोची निसव नेगु मेट्रिक टन साथौं थेङ्क वैगु सिनाज्याई इलेसाई अभाव चिलावनीको अपेक्षा छेबु कारोबार असारे जग चिन्यु अर्ब तकातिया राजस्व संकलन कर वृद्धि दुई हेक कारोबार अपोलो वो साउनिया थौ नापाङ्गु सोमबार पशुपति माध्य निसुथेन्से भक्तजन्त मोमो सरकार किसान या त इलेहे रसायनिक सा अर्थात मल उपलब्ध याकेको उद्देश्य थौ दोची निसाव नेगु मेट्रिक टन मल नेपाल हेटेङ्गुदु कृषि वन तथा वातावरण मन्त्रालय कथा ग्लोबल टेन्डर मार्फत न्यागु स्विदो मेट्रिक टन डीपीए मध्ये नापाङ्गु लत दोची निसाव नेगु मेट्रिक टन साथङ्क हेटेङ्गु ख सा भारतीय कोलकाता बन्दरगाहले जुवललाई दस तारीख हेठेङ्गु खसा साउन एक गते नेपाल पाखे ढुवानी सुरु यागु नापाङ्गु लत नेपाल थौथ्याङ्क वैगु मन्त्रालय न थागुदो ल्याउदनीको सा कोलकाता बन्दरगाहले प्याकेजिङ ज्याचुङ्गु वा प्याकेजिङको चाका चरणबद्ध रूपे नेपालले हेत तयारी चुकुदो सहाय आयात लिसे वितरण या जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड या त ब्यातगुदो सरकार थया न्यहे चालु ज्याचुङ्गु वा बाली सिजन या त लक्षित यासे निगु लख दोची मेट्रिक टन सा आयात यागु योजना सार्वजनिक यागु खाटकी डीपीए वा यूरिया निगुली सा थिथे माध्यम हेतेङ्गु ख तुक्सी सिनाज्या मुख्य इले दे योगको जिल्ला डीपीए मल्य अभाव खने डुगुदुसा विशेष याना कोशी मधेश लुम्बिनी लिसे प्रदेशीय किसान तेसा आवश्यक इले मल क्याम मखंगुली वापी त सा मधुसा बाध्य जुया वापी माल चुङ्गुरका खपिका गुखा कृषि सामग्री कम्पनी या क्षेत्रीय जाकुथे तेसा माग कथा आपूर्ति या मफुगुली सहकारी मार्फत सीमित मात्रा जक्क सा वितरण या गुखा सा नेपालीय रसायनिक सा उत्पादन मजुगुली सरकार पूर्ण रूपे आयते निर्भर ज्या चुङ्गुदु छेबु कारोबार वंगु आर्थिक वर्ष 2082-83 असार महिना जक चीन छगु अर्ब गुई पेङ्गु करोड चे गुङ्गु लख तक्का मल्याक राजस्व संकलन जुगुदु भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग या कथा थो आर्थिक वर्ष या दक्ले योको मासिक राजस्व ख विभाग सार्वजनिक आगु विवरण कथा वैशाखे खुगु अर्ब नि खुगु करोड स्वी च्यागु लख तक्का राजस्व संकलन जुगु खासा गुगु उगु दया निगुगु उच्च मासिक राजस्व ख विभाग तथा साउन एक गते छेबु कारोबार जुइगु पुँजीगत लाभकर अपैगु व्यवस्था बजेट मार्फत लागू जुई टुङ्का कर वृद्धि जुई नहे कारोबार यागु प्रवृत्ति अपगुख थुकिया प्रभाव स्वरूप असार महिना छेबु किनबेच अर्थात न्यागु कालबिल यागुले उल्लेख्य रूपे अपगुने राजस्व संकलन अपगु विभागीय निष्कर्ष दु थुक्सिया साउनिया नापाङ्गु सोमबार थौ सुथासे पशुपति माध्य लिसे दे न्यङ्कया माध्य या देगले भक्तजन्त मोमो ज्याचुङ्गु दु थौ सुथसिया सोता इलसे पशुपति माध्य या देग या पेङ्गुली लुखा चाकगुर्का पशुपति क्षेत्र विकास कोष या दुज छ्याङजी तीर्थ श्रेष्ठ जानकारी ब्या दिल सुथसिया सोता इलसे चागु देग या पेङ्गुली लुखा बनी आरती लिपा च्याता इतक्क भक्तजन या लागि खुला या त तयारी च्याचुङ्गु दु विशेष पूजा सुथसिया च्याता इल च्याताट्या इलसेन आचिन निता इ तक्क जुइ पशुपति ठा देठा दर्शन या त वैपी श्रद्धालु भक्तजन तेगु सहज सुरक्षित लिसे व्यवस्थित दर्शन लिसे विशेष पूजा व्यवस्थापन या व्यवस्था यान तगुदो पशुपति माध्य लिसे यहाँ गोकर्णेश्वर नागेश्वर डोलेश्वर मखा महाद्य लगायत देया चिढङ्गु तदङ्गु फुक महाद्य या देगले भक्तजन्त मोमजिया पाँच नचङ्गुदु सीधा कुरा प्रश्न विचार थोखा उज्यालो रेडियो नेटवर्क सोनीगले चे सानमेगा हर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क दे थिथि एफएम स्टेशन अनलाइन पाखे हलिङ्क छक्ल प्रसारण जुया चुङ्गु सुथस्य चिता या नेपाल वासुबुख चेस न्या नाक्षना दिगु दु बुखे अच न्यदनी अनलाइन सत्यबाजी यागु दोपने पेमसित जुन बर्ड फ्लू या कारण ज्याउला खेल चिडिया खाना त सुङ्गु करो तक्का या ड्याप व थनिसे तस्त वावीको चो पाजिया वनिगु उज्यालो रेडियो नेटवर्क न्या नाचना दिश
1: सुन त मेरो कपडा प्याकिङ गर्दिऊ त श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो
2: ए हो र अनि सुन्नु त अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिङ भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीड़ितहरूका लागि 1,00,000 छुटको व्यवस्था पनि छ।
1: ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छु।
3: क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट।
4: फोन 056-494-333 493-555।
0: उज्यालो रेडियो नेटवर्क वेयथिथि एफएम स्टेशन अनलाइन पाखे हलिङ्क छक्ल प्रसारण जुयाचुङ नेपाल वासबुखे हाकन छित लसकुस्तु आत्तकयमु बुख हाकन छक सरकार अन्यागु दोछि निसव नेगु मेट्रिक टन सा थोङथ्याङ्क विगु चेबु कारोबार असारे जग चिन्युगु अर्ब तकातिया राजस्व संकलन व सावन्या नपाङ सोमबाथ पशुपतिमा देखा सुतासे भक्त जन्त मोमो हलिङ्क बुख प्रहरी अनलाइन सत्यबाजी यागु दोपने येन पेमसित चोगुदो जिल्ला प्रहरी परिषद प्रहरी उपरीक्षक पवन कुमार भट्टराईया कथ ये महानगरपालिका वडालिया एक नारायण चौर इन्टरनेट सर्भर सिम कार्ड ल्यापटप र मोबाइल फोन नाप इम त जोङ्गु ख कालीकोटिया टेकेन्द्र शाही वर्दियाया विश्व रेग्मी अजय महत्तार व बाँकेया आदित्य बाल्किमी या त जोङ्गु ख इम्स मोबाइल ब्याङ्किङ पाखे छगु करोड गुई खुगु लख तक्का बराबर या कारोबार यागुर कान सी दुगु दुसा इमी लागे थप अनुसन्धान ज्या चङ्गु प्रहरी थागुदु यलय जाउला खेले दुगु सदर चिड़ियाखाना बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि जुसेली नेनु तक्क बन्द जुगले सोङ्गु करो तक्क बराबर या आर्थिक क्षति जुगुदु चिड़ियाखाना सूचना अधिकारी गणेश कोइरालाई कथा सामान्य दिने नियनित दोछी नेसन्से दोछी व च्यास तक्क चिड़ियाखाना श्वेत मनोत भएको खसा शनिबार न्यादोन्से नेदो तक्क व आइतबार सोदौ न्यासन्से न्यादो तक्क सिया चिड़ियाखाना सो भएको ख कर्फ्यू कारण बन्द जुया हाकन सञ्चालन जुगु नापाङ्गु दिन वङ्गु साउन एक गते च्यासमस्या चिड़ियाखाना सो वगुरका चिड़ियाखाना थाकु दुसा वङ्गु आर्थिक वर्ष चिड़ियाखाना चिन्च्याको करो तक्काया आमदानी यागु ख आर्थिक वर्ष 2082-83 नि छकु करो तक्का आमदानी यागु लक्ष्य कया तगु जुसान बर्फिया कारण ता इतक बन्द जुगुले लक्ष्य पुरा या त हात्या थप जुगुरका प्रशासन थागु दु सुनिगै थिथि सड़के छजाजक वा वसान जलमग्न जुइगु अवस्था अपयचङदो मिगन सड़क जलमग्न जुया गाड़ी सञ्चालन हे समस्या वगु खट काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी ज्याकुथिया प्रहरी उपरीक्षकले सूचना अधिकारी नरेश राज सुवेदी ट्राफिक व्यवस्थापन सामान्य जुसान ले गाड़ी ले ल मुनिवले दुर्घटना या जोखिम अपगुर्का थ्याल वेकै कथ ले ल मुनिवले गाड़ी छौहे लेन आवत जावत यामाको अवस्था सृजना जुइगुली दुर्घटना सम्भाव भावना अपएको ख सुवेदी वा वैगो कारण मिग शनिले न माइतीघर अनापनगर लगायत शनिगाई थिथि थासे सड़क जलमग्न जुगु धैदिल थो लागे दीर्घकालीन रूपे प्रभावकारी थल्छे ल या निकास व्यवस्थापन आवश्यक जुगुरका वेगल थैदिल वर्षा यामे ल मुनिगु सड़के तस्क गाड़ी मनियाके त सुरक्षित दूरी कायम या त वा ट्राफिक प्रहरी निर्देशन पालना या त सुवेदी इनाप यानदीको थनिजे तस्क वावैगु चोर छसि कथ पा जुया वनीगु चुकुदु तर छुसु थासे तस्क वावैगु सम्भावना थास अझ न धनीगु मौसम पूर्वानुमान महाशाखा थाकुदु महाशाखा कथ मिग मिग थे योगको थासे तस्क वावैगु सम्भावना मरु तर छुसु थासे दास तस्क वावैगु सम्भावना अझ न धनी थथे जीवले आकस्मिक रूप ल वावैगु चल वैगु जोखिम धनीगुली सावधानी नाले त महाशाखा इनाप यागुदु थौ निने कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम देश तराई योगको थासे व मधेश प्रदेश छुसो थासे नन्याना मलसे मध्यम कथाई वाविको सम्भावना दुगु मौसम पूर्वानुमान महाशाखा थाकुदु अथे कोशी व सुदूरपश्चिम प्रदेश पहाड़ी लिसे तराई लगाए कम थासे व बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश पहाड़ी लगाए छगुनीको थासे तस्क वाविको सम्भावना दुगुली सावधानी नाले त महाशाखा इनाप यागुदु सिधा कुरा प्रश्न विचार थोखा उज्यालो रेडियो नेटवर्क सोनीगले चाहिँ सानमै गहर सय नीति नेपाल वा सबुखने कोचाल छिनेता अहिले हाकन नेपाल खबर जुना वेगुहे जी दक्ले लिपा थौय मुबुख हाकन छक सरकार न्यागु दोछी निसौ नेगु मेट्रिक टन सा थौ थङ्क वेगु सिनाजे इले साय अभाव चिला बनिगु अपेक्षा छिबु कारोबार असारे जग चिन्यु अर्ब तकातिया राजस्व संकलन कर वृद्धि जुही न्याहे कारोबार अपोल हो साउनिया नापाङ सोमबार थौ पशुपति महादेवता सुतासे भक्तजन नेपाल उज्यालो रेडियो नेटवर्क सोनीगले चेसानमै घरम स्टेशन अनलाइन पाखे हलिङ्क छक्ल अन्यदी गुचुल उज्यालो रेडियो नेटवर्क या उज्यालो अनलाइन .com ताजा खबर नियन नापम बोल्ने

0: सीधा कुरा प्रश्न विचार
1: उज्यालो रेडियो नेटवर्क
2: नेना चुना दिला लहना उज्यालो रेडियो नेटवर्क के सुनिगले 6.9 मेगाहर्ज सीधा कुरा प्रश्न विचार डिपार्टमेन्टका हकनचक ज्याजोङ नाचना दिमा पासाइत लस्कु सिसा उज्यालो रेडियो नेटवर्क नाचना दिएको दु स्वर्णिगले चे सानो मेघार्स नपथि थे एफएम स्टेशन उज्यालो अनलाइन डट कम पाखे ज्याजो सिसा हलियङ कहे नाचना दिएको छु थौ या लहना ज्याजो स शिक्षाविद भाजु मोहन गोपाल न्या छु जु से खानावाला यान छुना उखा वे कसे छु न छु न न्य स तुसा लहना फेसबुक ग्रुप छ दे फे मोहन गोपाल दै हकनचक ज्याजो स लस्कु स्याम छला थन फेसबुक ए अमीर श्रेष्ठ जुन चैदी जगला